बॉर्डर जमीन पे इधर कोने पे डीजे नशे में पड़े दो किसी के यहाँ पे बांजे बचीजे सबके फोनों पे कॉलों पे कॉले लौंडे नहीं सोले नोटों की गड्डी वो उड़ाते वो जो गए नहीं कॉलेज जमाना रन दिस ईयर वन लेस फियर आई एम लेट दे गो रन दिस शिट 100 इयर्स लेटर आई फील इट समथिंग्स नियर पेन शार्पर देन अ मदरफकिंग हंटिंग स्पीयर.